देवपुरी स महादेव की, दीप नारायण भगवान की जय, माधव कृष्ण भगवान की जय। हरिओम।

So that's why we salute the Tulasi from that time. Continuously, she is serving this universe. Many, she is avoiding, she is healing, she is removing many difficulties, cancers, all the sickness. That is, she has got the power. That's why if you are also flying back to Europe, it's a better if you're quarantined, if your custom allow you. So take some Tulasi seed with you, if you haven't already done this. And Tulasi is the wonderful. It need to go everywhere. And this is for the human welfare. Human welfare. Everyone deserves to take advantage from this divine herbs, Tulasi. That's why Tulasi is worshipped every Krishna temple, every Vishnu temples. And Tulasi is offering to Saligram. And Saligram is amazing holy stone, black stone, that is not available anywhere around the world except Himalayas in the Kali Gandaki River in Nepal. So anytime if you go, you can find Saligram. Maybe you can see and have a look somewhere else here also. That is, what is the Saligram? So that is the holy Vishnu's stone. That because of the curse of the Tulasi, it is saying that as a Vishnu. That's why many people, they keep at least five Saligrams. The five Saligrams, one represents Shiva, one for Surya, the sun, one for Devi, one for Ganesh, and one for Vishnu. This is Panchadevata. So everyone, they worship Panchayan in their home. In Panchayan, that's a five Saligrams. So everyone can keep in Saligram and Tulasi. It has got medicinal benefits, herbs, and also whenever you sick, whenever you are a problem, that you go to hospital. In hospital, what they do first, then they supply first is oxygen mask. So nature will give you oxygen masks in your home. When you plant Tulasi in front of your door, in your flower plant, that is continuously for free, without ambulance, without doctors, without anything, she's going to give you free that Tulasi is oxygen. And that herbs is useful for your anything, for fever, for tonsillitis, for back pain, for any difficulties, even cancer, it shows like antibiotic there, antifungi or antibacterial Tulasi. If you put in tea, there is Tulasi tea as well. If you wear Tulasi mala, that also helps your blood pressure. If you put always two pieces of Tulasi, that removes the bacteria and helps you. This Tulasi is the amazing herbs. When you know this one, so no matter in this world, Tulasi doesn't choose any caste, culture, group, nationality, or gender. It is for everyone, everywhere. It is helpful. So you can utilize this is and Tulasi's Mahima. And Jai Bali Siyavara Ramachandra Ki, Jai Vishnu Bhagavan Ki, Jai. Jab Sankhachud Ko, Jab Se Sankhachud Ka Bal Bahut Bal Gaya Bada Tha, Kyunki Patni Vrata Dharma Se, तब क्या हो गया कि विष्णु भगवान छल करने के लिए गए. जब विष्णु भगवान ने जो कृष्ण कवच छीन लिया वृद्ध ब्राह्मण बन के, उसके बाद में पति बनकर घर में चले गए और दानव शंखचूड़ के भेष धारण करके तुलसी के घर में चले गए. तुलसी के घर में चल गए तो तुलसी आ गई कि उनके स्वागत करने के लिए. विष्णु भगवान के उसने तो नहीं देखा, उसने तो सोचा कि हमारे पति आ गए. तो भूले वाली तुलसी ने क्या किया, पति आ गए समझ के उसको सलाम कर लिया, पाँव धो लिया, घर में लेकर गया, खाना दे दिया. रात में फिर रतिक्रीड़ा किया और रतिक्रिया करने के बाद में जो पति व्रता धर्म है पत्नी का नष्ट हो गया. इसलिए कोई भी विवाहित नारी तो अपने पति छोड़ के किसी के साथ में रति है तो उसका पति व्रता धर्म नष्ट हो जाता है. ऐसे करके अगर पति भी कहीं किसी को संबंध रखता है अपने पत्नी होकर भी, तो उसका भी पत्नी व्रत धर्म नष्ट हो जाता है. तो इस दुनिया में पति व्रता धर्म और पत्नी धर्म सबसे शक्तिशाली है. जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी और जो पार्वती और शिव, और ये आप देख सकते हैं शंखचूड़ और तुलसी में भी, जब इनका पत्नी व्रत धर्म, जो पति व्रत धर्म नष्ट हो गया, तो शंखचूड़ दानव भी कमजोर होने लगा. जय बोलिए भगवान नारायण की जय. तो इसका अर्थ क्या है कि जब आपको घर में पति पत्नी के बीच मेल है तो दुनिया कोई नहीं बिगाड़ सकता है आपको, ना तो पड़ोसी बिगाड़ सकता है, ना तो भाई, नहीं तो कोई. जब पति पत्नी में कलह पैदा हो गया तो शक्ति छीन लेता है, तो घर फिर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है. और जितने भी आप देखावटी के लिए पति पत्नी हो जाते हैं, और पति के दुश्मन पत्नी ही हो जाती है. तो इसलिए बोलते हैं कि एक आदमी ने पूछा कि पत्नी और दुश्मन में क्या फर्क है, तो वो आदमी ने बताया कि दुश्मन दूर में रहता है और पत्नी साथ में सोती है, लेकिन दोनों दुश्मन.

तो मतलब जिसको साथ में प्यार नहीं है, अच्छा नहीं है, तो ये शत्रु के रहता होता है। इसीलिए क्या है कि जब मिलन होता है वो शक्ति बन जाता है। तो विष्णु ने भी वो शक्ति छीन लिया तुलसी को। तुलसी बहुत गुस्सा में आ गई जब पता चला कि ये विष्णु तो छल करके मेरा धर्म को लूटने के लिए आया, तो आप ऐसा पाप करने के लिए आया तो मैं श्राप देता हूं। तो उसने श्राप देने से पहले विष्णु ने बोला कि तुलसी इससे उपाय कुछ भी नहीं था, क्योंकि आपके पति दानव ने सारे संसार में क्या किया कि परास्त कर दे, देवता के लिए कुछ जगह ही नहीं है, इसलिए क्या है कि मैंने ऐसा करना पड़ा, माफ दीजिए। तो तुलसी ने क्या किया, श्राप कर दिया, श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद में क्या श्राप दिया, पाषाण होके रहना पड़े, दैट मीन्स तो यू नीड टू बी ए स्टोन, तो आप पत्थर होकर रहना पड़े। तो पत्थर होकर रहे तो उसी के श्राप से विष्णु भगवान शालिग्राम होकर रहे, इसलिए शालिग्राम को हम क्या है कि विष्णु भगवान के प्रतीक माना जाता है। तो उसी समय में जब श्राप देते समय में शिव जी आ गए और भोले भाले शिव जी ने क्या है तुलसी को समझाया, तुलसी ये आपका कुछ भी दोष नहीं था, लेकिन क्या है कि धर्म रक्षा के लिए विष्णु ने भी ये किया है, इसलिए आप अब क्या करो कि कहीं कोई परपुरुष से जाने से शरीर क्या है कि अपवित्र होता है, लेकिन मन नहीं हो सकता है, आपको मन नहीं था, आपको मन से नहीं किया है, इसलिए क्षम्य है। इसलिए कभी कभी क्या होता है तो गुंडे लोग आके रेप कर देते हैं, उसका मन नहीं रहता है, लेकिन शरीर तो अपवित्र हो गया लेकिन मन नहीं रहता है, तो मन को हम माना जाता है, स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर भगवान भोले ने भी वही किया कि आपका शरीर त्याग कर दो, उसने शरीर त्याग कर दिया, वही त्यागा हुआ शरीर गंडकी बनकर बग रही है अभी, सत्य युग से अभी तक गंडकी वही तुलसी का शरीर था, और गंडकी में ही शालिग्राम मिलता है, गंडकी नेपाल में पड़ता है, नेपाल के पोखरा के नजदीक मुक्ति क्षेत्र धाम है, वही धाम से गंडकी नदी बहती है, वो गंडकी के शिविर में शालिग्राम मिल जाता है। और शालिग्राम के अंदर में आप तोड़ के देखो तो वहां पे चक्र सुदर्शन चक्र दिखाई देता है विष्णु का, इसलिए ये कोई बनी बनाओ बात नहीं है, आप खुद जाके अभी देख सकते हैं, कलिकाल में कलिकाल का देवता साक्षात आप देख सकते हैं शालिग्राम को, और शालिग्राम के अंदर चक्र देख सकते हैं। अगर कोई भी शालिग्राम आने वाला नदी गंडकी में जाके, नेपाल के गंडकी में जाके स्नान करेगा तो वो पुराण में लिखा है आपको 100 योनि तक आपको धर्मात्मा बनकर रहने का आशीर्वाद मिलेगा और को पाप सारा छूट जाएगा। तो इसीलिए उस समय से तुलसी और भगवान विष्णु साथ में रहने लगे, और शिवजी ने बोला था कि तुलसी आप अब संदेह नहीं करो, भगवान विष्णु को स्वीकार करो, आप भी वैकुंठ चलो। और तुलसी ने बोला कि मेरा सारे समय में मेरा पूजा होना चाहिए, चलो ठीक है, वही आशीर्वाद मिला। तो आज तक भी हम तुलसी को पूजा करते हैं, विष्णु भगवान के साथ में रखते हैं, और तुलसी आपको खान पान में रखे तो क्या हो जाता है, वो आपको दवाई हो जाता है, आयुर्वेद का औषधि है, दवाई है तुलसी, आपको कैंसर से लेकर सारा रोग को निवारण करता है तुलसी। घर घर में रखे तुलसी ऑक्सीजन देता है, तुलसी आयुर्वर्धक है, तुलसी क्या है कि आरोग्य देता है, इसीलिए तुलसी चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, सबके लिए समान अवसर समान लाभ देता है। तो सबके घर में तुलसी होना चाहिए, तुलसी पूजा करे नहीं करे फिर भी लाभ देती है, पूजा करे तो विष्णु भगवान खुश हो जाते हैं, आपको पाप भी नष्ट हो जाता है, आपको आरोग्य प्राप्त हो जाता है। तो उस दिन से तुलसी और शिव जी साथ में रहने लगे। जय बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। सो वी गोइंग टू चैंट नारायण, कृष्ण भगवान के क्या है, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से, कृष्ण कवच से, वजह से ये युद्ध में शंखचूड़ दानव नहीं हारा था। अब क्या है, शंखचूड़ दानव हर गया और कृष्ण कवच विष्णु के पास में रह गया। कृष्ण इतने शक्तिशाली पहले भी थे, अभी भी है, और कवच शक्तिशाली है। तो कृष्ण भगवान को जय बोलो, जय बोले कृष्ण भगवान की जय श्री।

0: ओम बोले श्री श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देव पुरुष महादेव की जय। श्री श्री माधव कृष्ण भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की जय।
1: जय बोले भोले बाबा की। सो इन शिव पुराण व्हाट एवर टॉक्स the Sustani Puran also the same thing as I mentioned before. It teaches us how we can remain all the time in a deep spiritual value. The life is very short and we came in this universe that for a short life. So it is saying that in sky, whatever light gives by the star, that much wide place it can see. That's why in our life also, whatever divine divinity or purity we can maintain, that much purity we can carry with us. So every stories, every philosophy, every that the information teaches us these things here. So that's why whatever you mean, the change your vision, visuality, to Shiv Puran hamare liye aur sare vedadi ved kya karta hai ki hamare liye jivan kaisa saral banana hai और शिवजी की तरह कैसा रहना है। और शिवजी ने बोला है कि मैं कल्प कल्प में आवश्यकता के अनुसार कभी ब्रह्मा बन के, कभी विष्णु बन के और कभी शिव बन के मैं क्या है कि संसार को चलाता हूँ। तो कभी कभी मेरा भूमिका रहता है ब्रह्मा का, कभी विष्णु का, कभी क्या है तो कभी रहता है शिव का। इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विभेद नहीं है और शिव से विष्णु बड़ा, विष्णु से ये बड़ा वो हो ही नहीं सकता, ब्रह्म एक ही है। तो इसलिए ब्रह्म एक है, तो सबसे बड़ा शैव कौन है कि नारायण है, सबसे बड़ा वैष्णव कौन है कि फिर शिव जी है, वो तो हमने बारंबार बोलते ही आया है।

जिंदा, जब तक उनको पतिव्रता धर्म रहा था तो सदा वो अमर रहे। इसलिए आज के सोसाइटी में, समाज में तुलसी का महत्व क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से पीपल के महत्व के बारे में आज चर्चा किया है शिव पुराण के। अब इस समय में हमको साराम समय प्रस्तुत करने का समय आ गया, तो कल हमारे लिए बहुत अच्छा ऐसे ही प्रसंग आ जाएगा। आप लोग जरूर से आना सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक, और शाम को चार बजे से लेकर छः बजे तक ये शिव पुराण महात्म्य हो जाता है। ये महात्म्य तीर्थ स्थान में बैठकर श्रवण करने का इसका महत्व तो अलग रहता है। आप कहीं भी हो तो इसके लिए आप क्या है कि याचना करके आ जाइए, शरीर मन तो पवित्र हो जाता है, जन्म जन्म के पाप भी दूर हो जाता है। तो इसीलिए तो शिव भगवान का दृष्टि उनके पवित्र सोर शब्द से हम इस्तेमाल करते रहे, जुड़ते रहे। जय बलिए सत्य सनातन धर्म की जय।

0: नारायण हम सब दास प्रभु शरण परायणम सिक्स सो
1: शेष्टिकरात
0: कंटिन्यू
1: अपोक्रफी
0: फाइव टाइम्स मोर
1: ऐसे पेचकरात

श्री दीप नारायण भगवान, शिवानंद जी महाराज की, अलकपुरी जी महादेव, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की।

देव नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव, अलकपुरी जी महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवन जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति शांति।

श्री श्री देव पुरुषा महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान अलकपुरी जी सिद्ध पीठ की सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति शांति।

असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमद्यः पूर्णोशान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अलकपुरीजी महादेव की जय। देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। आराध्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। हिंदू धर्म सम्राट सद्गुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन।

जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की मात पिता गुरुदेव की ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सो आई टेल यू फर्स्ट दैट व्हेन वी आर हियर प्रैक्टिसिंग ऑल वेरी गुड those who are sitting in the front and other is backside, then they don't know they are looking like this and they are lying doing. To inko dono behno ko ek taraf lagao next time. Kyun aata hai bhai? Aisa hai ki aap ya to yahan se aake bitha do ya wahan se. Aap do baithe ho to piche wo log bhalai yun dekhe na phasa yun kare. जरा बस मैं कहूँ कि हर सोनी भाई बैठ रहे हैं, हमें ठीक है, हमें थोड़े थाने करते उठाऊँ कभी आज कल कराऊँ आज तो इसीलिए सत्संग सत सत और संग सत सत क्या क्या है, कितना है, क्या है, कैसा हुआ है, तो वो सत सत उसको कैसा आ जाएगा और नहीं रह जाएगा। सत संग तो कहता है कि संग किसके साथ रहे, संग किसके साथ में रहना है, जो दे आर गुड एंड दे लाइक एवरीथिंग एंड दे आर हेल्पिंग एवरीबॉडी, दैट इज कॉल्ड सत संग। The sat, sat is the good things, bad things, everything. Sat sang, then it is said, please come with me. We stay all together. We all be together like one. Yes. Then it is okay. Otherwise, other sit and like this, do the aage you kare, phir aage bade bade aadmi hota hai na. वो बड़ा बड़े का मतलब वो नहीं कह रहा हूँ, मैं उसका कह रहा हूँ जो थोड़ा छोटो आदमी है नहीं, वो तो बैठो आगे और मोटो मोटो बैठा आदमी तो वहाँ से आप देख सकते हो। एंड इफ यू नॉट दिस लाइक दैट देन दे आर लुकिंग ऑलवेज दिस साइड, फिर वो करता है ऐसा तो वो कैसा करे, फिर वो इधर करे, फिर वो ऐसा करता तो। सो फर्स्ट वी हैव टू लर्न Who should be here first and then second and like this. Then we have all, so this is Sat. Sat kya hai? Wo Sat kahan hai? Wo Sat kahan se aaya hai? Sat keval manushya ke liye nahi hai, janwaron ka bhi hai, wo bhi aata hai तो उनके बच्चा होता है और वो बड़ा है तो बच्चे को आगे आगे लेकर के बैठती है। छोटे होते हैं ना ऑल चिल्ड्रन, सो तो ऑल पीपल दैट आर एवरीवेयर दे टेल टू देम देयर मदर, यस मदर बट वेयर मेक द चाइल्ड, यस इन माय लाइक दिस इवन दैट Then it is said, yes, this is very good. So child is going front and mother is behind it. Taki the children can be with mother very nice and that. And not going out, then what happens is something.

0: सो सत्य वो सत्य होता है, सत्य ही सत्य है, सत्य ही सत्य है, वही सत्य कहा जा रहा है। तो सत्संग, और वो संग किसके है कि सभी के एक साथ, सभी को बट अदर वन वी विल गो दिस एंड बट गोइंग टू सिट लाइक दैट। सो व्हेन वी कम यू शुड कम फर्स्ट ऑलरेडी वेयर यू आर सिटिंग। सो वेरी नाइस सत्संग। तो सत्संग के बारे में एक भजन लगाओ, एक भजन लगाओ सत्संग का। सत्संगियों की, सत्संगियों की सन है ना भजन अपना बाप जी का है ना, हाँ तो लगाओ। तो बड़ा बाप जी का माधवानंद जी का है भाई, माधवानंद जी भगवान सारे विश्व में पधारे हुए हैं वो भी, और माँ प्रभु जी जब भी इधर उधर जाते हैं तो कितनी जगह, एक आज यहाँ बैठे हैं तो कल वहाँ बैठ गए वहाँ, नहीं तो वो बैठे। तो मेरा देश है ना यहाँ पर, मेरा देश बहुत बड़ा है, यू डोंट नो, सो मैनी कंट्रीज है, मैनी कंट्रीज, बट दे आर सिटी कंट्रीज है, बट अ वेरी बिग वन आर लाइक फिफ्थ इज आवर हमारा। तो इतना वो जो है दैट वॉटसन इज कमिंग फ्रॉम टेट फार फ्रॉम दिस वेर इट इज वॉटर एंड इन वॉटर में देर स्टिल वी आर अवर लैंड इज अवर लैंड वेरी मच यू नो दैट इट वॉज दैट टाइम वेल दिस ऑल द क्रिश्चियंस और दूसरे भी जो है ना दे कम इन साइड एंड दे टॉक द इंडियंस ऑल लाइक दिस सो डोंट गो होम नो स्कूल जाना देना कुछ करना नहीं था ओनली दोज हू आर लर्निंग वेरी पीपल सो दे वेर लाइक डॉक्टर्स एंड दिस और दिस अदरवाइज ऑल पीपल वॉज अभी भी आपको ले रहे हैं अभी भी उनको बराबर नहीं जाने देते हैं है? तो फिर कितना करते करते मोदी जी के नहीं मोदी जी क्या दूसरे तो वहाँ सिफा कितना लटक कर किया या किया वो वहाँ कहाँ पर बैठे रहे लेकिन भगवान की कृपा से ऑल एवरीवन दे ब्रॉट दिया ऑलरेडी टू इंडिया सो इंडिया का कितना वेरी बिग बिग बिग आई हैव नॉट सीन एवरीथिंग इंडिया इतना लंबा चौड़ा है आई वॉज नॉट गिव आई वेंट टू अदर कंट्रीज बट आई सी somebody this and that but how many countries have there and all have different language many language hai bharat mein lekin unhone sab karke hindu bataya aur hindu kahan se hindu bahut dur se hai ye kya nahi हिंदू कहाँ का किसको कहते हैं बताओ हाँ है नहीं संस्कृत में तो है हाँ सिंधु हाँ तो सिंधु तक का है हमारा इसमें आया है तो देखा ही नहीं है ना तो अभी हमारे क्या आगे इस साल में ऐसे आगे इन लोगों ने मुसलमान आगे खूब करा दिया वो है लेकिन वो तो हिंदी मुस्लिम्स जो है मुस्लिम के उनके वो नहीं है कुछ भी बहुत बस है दिखता है उनको और उसके आगे भगवान ही है बस और किसके ऊपर है ही नहीं और दूसरे कोई भी है क्रिश्चियंस है वो है हिंदुओं है उनके सबका है तो वो जितने मुसलमान हैं तो पहले हमारे हिंदू थे सब हिंदू हैं लेकिन हार्ड टू डू दे मैनी थिंग दिस सो देयरफॉर वी नो दैट एवरीथिंग दैट in my country and went to my country there. When I go to the airport, and then it's everywhere. Yeah. So I'm coming always with aeroplanes. Yes. And I see there, from that, I see it's our India, Hamara Idhar Se. So that all my disciples from other countries, they have all understood everything, and they practice here all the times and coming. Don't worry, they are not, but we want to come to here. The Swamiji have Maheshwaranand. So I have what do I do? मैं तो कुछ नहीं करता था अब तो लेकिन वो ही कर रहा है मेरे लिए हाँ पहले मैंने कराया but he said I told them but he didn't know I have done and what do you what will do and so my disciples that everybody in the whole countries whole world countries की अब they are come and made so in government India में कहते हैं कि महेश्वरानंद है वो हमने को हिंदुओं को इसको बुलाया है हुआ है तो वैसे ही करना चाहिए और मैंने कभी नहीं कहा इनको कि इन्हें हिंदू करो मैंने किसी को ना कहा कि हिंदू बोलो नहीं आप क्रिश्चियंस को बोलो आप उसको बोला आपका लेकिन बोलो कैसा क्या करो ये बात है नहीं तो मैं अगर ये इतना कि नहीं नहीं मैं तो मुसलमानों को इनका नहीं करेंगे वो और मैं रहूँगा तो फिर पड़े रहो गई वो तो आगे भी पीछे में बट नाउ द मैनी पीपल हैव हमारे डिसाइपल्स हियर ऑल दे कम्स दे आर नॉट कमिंग हियर फॉर वर्किंग हियर दे आर कमिंग फॉर महाप्रभु जी के और महाप्रभु जी के महाप्रभु जी देवपुरी जी का वो जो है दैट इज द फर्स्ट एंड सो माधवानंद जी ही गेंट ही फ्रॉम हिज हाउस ही वेंट आउट इट वॉज ओनली लाइक दिस एंड ही बॉट महाप्रभु जी जो है ही केम टू माई विलेज टू माई मदर एंड हियर माई वॉज स्टेइंग इन माई हाउस And there was one very nice person in Rupavas mein. Aur wo thoda padak thik nahi tha, to dheere dheere chalte the. But he was no very great, standing very great. Wo Mahaprabhu ji ke paas aaye the. To wahan bitha diya ki baitho aur padhao. To Baap ji ke wo nahi the itna. Chota se hi se Baap ji, Mahaprabhu ji. And wo aate the, then ghar pe aate the. फिर वो आते वो बैठते थे तो माधवानंद जी अवर स्वामी माधवानंद जी बाप जी ने निपल हमारे रूपावास में रखा है रूपाव में बहुत अच्छे लोग थे बहुत अच्छे अभी भी है अच्छा ही है लेकिन वो थोड़ा अब डब चबड़ गया हो गया यूँ से भी जगह हैं हाँ लेकिन वो नहीं होगा वो हो जाएगा वो अच्छा ही होगा वो भी अच्छा होगा और ये हमारे आश्रम में तो ये देखिए कि मेरे रूपावास गांव हैं तो रूपावास कंट्री इज द जहाँ जहाँ वेर एवर आई एम इन अदर कंट्रीज वेरी मेनी कंट्रीज तो वेर आर यू गोइंग टू रूपावास यस माय नेम इज रूपावास इन द होल वर्ल्ड 18 गांव वाले रूपा है वो नहीं जाने लेकिन वो मेरा रूपावास गुजरात वो वगैरह से भी हो लेकिन हमारे रूपावास तो वो ठेठ तक जब ही मैं जाता हूँ कि कौन से महेश्वरानंद का है कि कहाँ रूपावास और वो चल रहा है अब वो छोटे मोटे लोग हैं उसमें तो कुछ होता ही है ना और होना ही चाहिए नहीं तो फिर क्या पता करें है? तो इसीलिए सारे संसार के अंदर मनुष्य है मनुष्य मनुष्य ही है अब किसने वो नाम दिया उसका वो नाम दिया उसका वो नाम दिया है सबका नाम दिया कि किसका नाम है कौन है रे कि मैं मनुष्य हूँ बस अब हम मनुष्य हैं, तो मैंने कई बार कहा यहाँ से और करा दिया है और करूँगा कि अब हम नहीं कहेंगे कि ये किस जाति का है, जाति हमारी एक भारत की है और वो सभी को उसी को करूँगा मैं, आप देख लेना। हाँ ठीक है, आप मेघवाल हो, गरग से हो, जो भी हैं सभी हैं, वो है ही है, लेकिन है वो मेरा मनुष्य, मेरे देश का, तब देख लेना उसकी आगे में लगा देंगे ऐसा उल्टा आ जाएगा। हाँ है कि नहीं, प्रेमानंद जी ने, हाँ प्रेमानंद जी कहाँ हैं, ए प्रेमानंद जी, अच्छा प्रेमानंद जी तो हमेशा इसका प्रेम, इसका नाम ही प्रेम, प्रेम की बोलो, हाँ तो वो इनका है प्रेमानंद जी का, प्रेमानंद जी का इतना बहुत गांव देश है और देश में गांव बहुत बढ़िया है और पहाड़ों के ऊपर में भी नीचे सभी जगह है और इनका मकान या इतना बड़ा है, उसके अंदर में बहुत बड़े उनके उनके माता पिता जी का है ओके, लेकिन आप देखेंगे इनको देखेंगे कितना इसका मकान कितने बड़े छुटे हैं, कितने वृक्ष है, अभी भी खूब वृक्ष है प्रेमानंद जी का। तो प्रेमानंद जी आए मेरे पास में, मैं गया था कहीं तो ये भी आए, एक बार आए दो गए फिर वापस आए, और ये प्रेमानंद जी का बहुत प्रेम है, प्रेम की बोलो, श्रीदीप नारायण भगवान की जय।
1: श्री मारवानंद जी सदगुरु।

0: राधे भगवान श्रीदीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री सिद्धेव पुरी जी महादेवा की जय। श्री स्वामी माधवानंद जी सतगुरु देवा की जय। श्री विश्व गुरु परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी गुरु देवा की जय।
1: You do it, Puspa. One version. If I like it more, then I will have one more.
2: Satguru Dev ki jai.

ओम भोले श्री नारायण भगवान की जय, सतगुरु देव की जय। ओम बोले श्री नारायण भगवान की जय, श्री देवेश्वर महादेव की जय, हिंदू धाम साम्राज्य सद्गुरु स्वामी माधवरण जी भगवान की जय, विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरन जी योगी राज की जय।

0: श्री अलकपुरी से महादेव की जय। देवा दी देव देवेश्वर महादेव की जय। श्री दीनानंद भगवान की जय।
1: हिंदू धर्म शर्मासी माधवानंद पुरी जी महाराज की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी श्री महेश्वरानंद जी पुरी जी
0: गुरुदेव की जय।

पूज्यपाद अनंत श्री विभूषित परिब्रज काचार्य ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री श्री श्री 1008 विश्व

0: देव श्रीदेवपुरी जी महादेव की जय। राज्य भगवान श्री दीप नारायण महाप्रभु जी की जय। श्री होली गुरु जी भगवान की जय। श्री विश्व गुरु जी परमहंस स्वामी महेश्वर नंद जी गुरुदेव की जय।
1: सत्य सनातन धर्म की जय।
2: वन मोर भजन, डजंट मैटर विच वन।

सर्वप्रथम सद्गुरुदेव को प्रणाम करता हूँ। आप सभी साधकों बुद्धिजीवियों को प्रणाम करता हूँ। माई सेल्फ डी सी सुरंगानंद दिव्यराज, गिटारिस्ट ऑफ अनूप जलोटा एंड रेडियो टीवी। थैंक्स। आई एम फ्रॉम अजमेर, राजस्थान। नाउ आई एम प्रेजेंटिंग यू गुरु वंदना।

0: हरि ओम हरि हरि ओम। धन्यवाद।
1: थैंक्स। प्रणाम। धन्यवाद। समय हो तो मीरा का या कबीरदास जी का या अनूप जलोटा जी का 15 मिनट देंगे, 10 मिनट। ओके। माय गुरु अनूप जलोटा इट भजन ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन।

आने लगी महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन।

शंका मत करिए, ये दो दिन तो कुदी चादर ओढ़, शंका मत करिए, ये दो दिन तो कुदी।

प्रीत न कर जो को। मीरा कहती है, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूडो, अरे थारा देसा में राणा साधु नहीं छे, लोग बसे सब कूड़ो। नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूडो, नहीं भावे थारो देसड़ लो रंग रूडो।

छोड़ो राधा जी थारो ते सड़लो रंगी दूड़ो नहीं बावे थारो ते सड़लो रंगी दूड़ो।

ओम शांति शांति शांति शांति सद्गुरुदेवाय नमः सद्गुरुदेवाय नमः सद्गुरुदेवाय नमः। किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा चाहता हूँ। आपका धन्यवाद। एक बार इफ यू वांट थैंक यू।

गुरु महेश्वरानंद जी की शरण में, सुरंगानंद दिव्यराज नाथ शिवानंद अजमेर, शिवम शारदे कला केंद्र।

सदगुरुदेव को प्रणाम, सभी सज्जनों को प्रणाम। और सुनो, इनफ, धन्यवाद। A little composition written and composed by me. Please hear and entertain, and please peace to God and prayer to our Gurudev. In the words, nothing. झूठी माया, झूठी काया, झूठा ये संसार है, झूठे जगत का झूठा तमाशा, झूठा कारोबार है।

0: जी गुरुदेव। मिला,
1: एक महीने पहले आए थे,
0: पूरा पूरा परिवार आया था आपके शरण में, बड़ी खुशी है। हाँ मैं तो चलेगा, लेकिन आप, मैं नाचीज कुछ नहीं आता। हरिओम।

सतगुरु साहिब देवपुरी सा, सतगुरु साहिब देवपुरी सा, सब संतन सिर ताजे, सब संतन

पात्र है ऐसो ये गूंज भेद कहे गाथा श्री स्वामी दीप फरमाया रे बड़े भागी जन सुने रो मोरा सदगुरु दियो संदेशो रे मैं हूँ जैसो को तैसो नहीं जीव ईश ब्रह्म माया में केवल एक अजाया रे ये महान सत उपदेशो नहीं है ओम सो

0: की जय।
1: जय परशमादेव की जय। सिद्धेश्वरण भगवान की जय। हिंद धर्म सम्राट परमहंस स्वामी श्री माधवानंद
0: ब्रजमहाराज प्रदेव की जय।
1: विश्व गुरु महामंडलेश्वर परमहंस
0: स्वामी की जय।
2: सत्य सनातन
0: धर्म की जय।
1: माता
0: पिता गुरुदेव की जय। शांति शांति शांति। अभी पहला मौका है, पूरी पार्टी लाऊंगा साजो सामान सहित जब आदेश करेंगे आप। और मुझे तो आपकी शरण में देश विदेश में आपके आश्रम में जहाँ आप आदेश करो। रुकूंगा, आप जब तक कहोगे रुकूंगा।
3: बोले शंकर भोले शंकर भोले
0: शंकर भोले। रिटन एंड कंपोज्ड बाय मी, आई एम प्रेजेंटिंग गुरु शरणम।
3: जय शंकर भोले, जय शंकर भोले, दादा दादा दादा। जय शंकर भोले, जय शंकर भोले, शंकर भोले, शंकर भोले, ये सारा जग बोले। जय शंकर भोले, जय

शांति शांति शांति। सद्गुरुदेवाय नमः, मातृता गुरुदेवाय नमः, भारत भूमि नमः, ओम सना।

0: देवादि देव देवेश्वर महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। अलकपुरी जी महादेव की जय। ओम शांति ओम शांति ओम। ओम नमो श्री प्रभु। ओम इज ऑलवेज व्हाट वी नो।
1: ओम ये तो जो poznáme už.
0: Om namo. Namo means I bow down.
1: Namo znamená skláňam sa.
0: I bow down to thyself, my Mahaprabhuji.
1: Skláňam sa pred tebou, Mahaprabhuji.
0: Om namo Sri Prabhu. Sri is the knowledge.
1: Sri predstavuje poznanie.
0: Prosperity.
1: Prosperitu.
0: Good health.
1: Dobré zdravie.
0: Everything. Sri, Om and Sri.
1: Om a Sri.
0: This mantra is very good.
1: Táto mantra je veľmi
0: dobrá. Om namo Sri Prabhu. And therefore, this Om Sri is Mahaprabhuji.
1: A preto Om Sri znamená Mahaprabhuji.
0: Om Namo Sri Mahaprabhuji.